सुनने वालों, एक मजे की बात सुनिए। एक रोमांटिक पिक्चर देखकर मैं घर आ रहा था। रास्ते में आरडी बर्मन का एक गाना गा रहा था कि अचानक वो मिल गई।

0: एक्सक्यूज मी, मैं हैव द प्लेजर ऑफ डांसिंग विद यू।
1: मैं स्ट्रेंजर्स के साथ डांस नहीं करती।
0: ओ आई सी, बाय द वे आई एम अमर, और आप?
1: निशा एंड किरण हियर, प्लीज टू मीट यू।
0: प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। मिस निशा, अब तो हम स्ट्रेंजर्स ही रहे, कम ऑन।
1: सॉरी, मैं किसी दोस्त का इंतजार कर रही
0: हूं। वैसे हम भी आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं।
1: मैं लोफर्स के साथ दोस्ती नहीं करती। गेट लॉस्ट, शैल बी डांस,
0: गेट लॉस्ट।
1: सिली पर्सन, रियली।
2: मैं देखता हूं। हेलो,
1: तुम्हें भी डांस करना है?
0: ओह माय गॉड, आप ज्योतिषी हैं? आइए डांस करें।
1: यू?
0: ओह नो, इनकार मत कीजिए, मैंने अमर भैया के साथ शर्त लगाई हुई है।
1: ओहो, तो ये साहब उनके भाई हैं?
0: जी छोटा सा।
1: ए मिस्टर, ये ट्रिक बहुत बासी हो चुकी है, कोई नई ट्रिक सोच कर आइए।
0: राइट, मैं अभी भैया से पूछ के आता हूँ। लेकिन मैडम, मैंने तो शर्त लगाई हुई है, आपको मेरे साथ नाच लेना चाहिए।
1: कोई जबरदस्ती है?
0: जी हाँ।
1: देखती हूँ कैसे नचाते हो।
0: देखिए मिस, मैं आपको नाचने पर मजबूर कर सकता हूँ।
1: ओह फॉरगेट लॉस्ट,
0: आप नाचेंगी?
1: इम्पॉसिबल।
0: आप जरूर नाचेंगी?
1: आई से इम्पॉसिबल।
3: Ain't nothing is impossible. Bye bye.

0: मुबारक हो, मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या नाचती हैं आप। हमने तो समझा आपको नाचना आता ही नहीं। उसने कहा जवाब नहीं। आपके डैडी से मिलना है।
1: सीधे डैडी से?
0: उनका आशीर्वाद चाहिए।
1: काफी गलत फहमी है।
0: मुझको नहीं, आपको है।
1: मेरे डैडी जज हैं।
0: और मेरे भैया जेल में हैं।
1: डैडी सिफारिश नहीं मानते।
0: सिफारिश गरीबों को चाहिए।
1: ओहो, मालदार हो।
0: तो आपकी दुआ से।
1: हैंसम और स्मार्ट भी।
0: आपकी दुआ से।
1: नाच का भी खूब लेते हो।
0: जी हाँ, आपकी दुआ से।
1: जेल जाना कैसा रहेगा
0: जी।